0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: What a beautiful track. जिस्म मूवी है ये, बिपाशा बासु को देख लो, श्रेया घोषाल को सुन लो, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, ब्यूटीफुल ट्रैक, ब्यूटीफुल मिलेनियल यादों के साथ. मैं हूँ शिरिन ऑन बिग 106.2 मिलेनियल वीकेंड.
1: Well, time to wrap it up. Not before Shirin gives her final dose of her memories of 2000s. And of course, over to her. मैं अब नहीं बात करूंगा, अब सिर्फ शिरिन बात करेगी. उसका टेस्ट है आपके साथ बात करने का.
0: ओके, तो मेरा टेस्ट है, सब लोग जरा ध्यान से सुनेगा. देखिए, इस हफ्ते मैं पूछना भी चाहूंगी उज्जवल से कि ऑफकोर्स सब लोगों ने देखा होगा धुरंधर. अब जो है धुरंधर रिवेंज, ये आ चुका है नेटफ्लिक्स पे. और इसमें आप सबने देखा होगा कि कितने सारे ओजी मिलेनियल सॉन्ग्स को उन्होंने रिक्रिएट किया है. देखिए, ये जो रिक्रिएशन और ये जो रीमिक्स होता था, हमारे टाइम पे भी होता था, लेकिन सारे सॉन्ग्स जो हैं एल्बम्स बनते थे इसके, लेकिन मूवीज में लिया जाना बहुत ही कम होता था. सो दिस शोज हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ व्हाट अ काइंड ऑफ अ गोल्डन एरा दिस वाज, द मिलेनियल टाइम्स, है ना. जैसे कि एल्बम सॉन्ग्स बनते थे, जैसे कि वो है कह दू तुम्हें, जिसमें कि कीथ था, एंड वी कुड सी आयशा टाकिया इन दैट सॉन्ग, इट वॉज रियली नाइस. एंड देन देयर वॉज वन मोर, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, दैट वॉज गुड एज वेल. एंड उसके बाद द बेस्ट वन, परदेसिया, जिसमें कि राखी सावंत को हम देख सकते हैं, शी वॉज सो गॉर्जियस इन दैट सॉन्ग. बस हो गया भाई, राखी सावंत के बाद अब मैं कुछ और बोल ही नहीं सकती. तो आई एम श्योर उज्जवल यू एग्री विद मी,
1: एब्सोल्युटली. मतलब वो डेज वर डेज, एंड इसलिए सबको अभी भी एमटीवी और चैनल वी के सारे गाने रटे पड़े हैं, एटलीस्ट फॉर ऑल द मिलेनियल्स.
0: आई नो.
1: ऑलराइट, आई थिंक दैट्स अ रैप.
0: यस, दैट्स डेफिनेटली अ रैप. सो फॉर मोर इंटरेस्टिंग बातें एंड मिलेनियल सॉन्ग्स, कीप लिसनिंग टू बिग 106.2 मिलेनियल वीकेंडर. दिस is me Shirin signing off for now, but agle hafte fir milenge with some more fun, some more song.

106.2 The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं बिग 106.2 The Beat of Bollywood.

0: झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है
0: तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा।
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती,
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: रिवाइंड योर हार्ट, रिवाइंड योर वीकेंड, let the 2000s take over. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: This Eid, the celebration gets bigger at GWM. Join the GWM Carnival from 28th to 30th May at the all-new GWM Sheikh Zayed Road showroom from 4 p.m. to 8 p.m. Discover cash discounts, exciting referral rewards and win 10 grams of gold. Come with your family, explore the latest GWM SUVs and pickups and enjoy three evenings packed with excitement and exclusive offers. 3 days, one destination, endless excitement. Celebrate Eid the GWM way. Visit the new Sheikh Zayed Road showroom from 28th to 30th May from 4 p.m. to 8 p.m. or call 800-GWM-UAE to know more. GWM, go with more. Terms and conditions apply.
1: बड़ी खबर, यूएई लॉटरी से 5 मिलियन दिरहम का विनर अनाउंस हो गया है। साउथ अफ्रीका के ब्रैंडन ने अपना ख्वाब सच कर दिखाया एक लाइफ चेंजिंग जीत के साथ। लकी डे ड्रॉज हर बुधवार और शनिवार रात 9:30 पर, जहां 5 मिलियन और 30 मिलियन दिरहम जीतने का मौका। तो क्या आप होंगे अगला विनर? अभी टिकट्स ले theuaelottery.ae पर। प्रेजेंटेड बाय द गेम LLC GCGRA द्वारा लाइसेंस्ड 18 साल और उससे ऊपर के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: Rewind your heart. Rewind your weekend. Let the 2000s take over. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: बड़ी खबर, यूएई लॉटरी से 5 मिलियन दिरहम का विनर अनाउंस हो गया है। साउथ अफ्रीका के ब्रैंडन ने अपना ख्वाब सच कर दिखाया एक लाइफ चेंजिंग जीत के साथ। लकी डे ड्रॉज हर बुधवार और शनिवार रात 9:30 पर, जहां 5 मिलियन और 30 मिलियन दिरहम जीतने का मौका। तो क्या आप होंगे अगला विनर? अभी टिकट्स ले theuaelottery.ae पर। प्रेजेंटेड बाय द गेम LLC, GCGRA द्वारा लाइसेंस्ड, 18 साल और उससे ऊपर के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: Big 106.2.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।